ये शिंकी राजुगो के कुरुप जीव शिराकी और चेचा रा ठेम सुबे चेला कोंचु सामे राल्ती मगोबता चेचा एमे वेले तुचु चिंतु योमाशी इने रागे सेमचिला चामा गले शिरा योशी रान गले सुनि मेदु चु रान वने सेम जासी जुदा Rang nishu zhe yin mi tu su zhi. Kei zi hong zu mei bi na, ma zu sumpo di nian tu ni ka shuo zhi. Hong zu rang gu di or da. Shi bu chim la. Hu bin. Hu bin. Hu bin. Gu du ya.

0: उन्हें समझ लेते सुना क्या खुना नहीं के मिक्से सुचुं जुया ला मुझे नाम बचा दोस्त दो खुनी चंबो आमर से जोतां दी जुई मीम चा
1: छे संचे खुना नहीं जो सेदा लो से थोप दी जेजी तुम्हारे चुचु दी जेजी चेदो कुबा चुई
0: जे जेमा खुना नहीं के उन्हें चीवी ना जोम जो लोया यार ला चिन्या सोया यार सी यार के सिरा जुमार बे
1: इतनी शेवा यार बे आ
2: खुना
0: नहीं गाव तुम जो
2: चेया
0: करे अ
3: Gen Lula Kamsa. Gen Lula Kamsa.